0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খান্তিক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।

0: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said the government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. Mr. Shah said the 3 new criminal justice laws will be implemented 100% within the next year, aiming to ensure the resolution of criminal cases up to the Supreme Court level within 3 years and to boost

এইবাৰ শুনক মীৰা ছায়া ছবিৰ এটি গীত লতা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠত।

0: স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত এইচ আই ভি সন্দৰ্ভত সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত আজিৰে পৰা 60-দিনীয়া বিস্তৃত আই চি অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত পুৱা 10 বজাত হ'বলগীয়া এই অভিযান মুকলি অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল উপস্থিত থাকিব। ৰাজ্যৰ 35খন জিলাৰ 3,900খন গাঁৱৰ 80,000টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় 5,00,000 লোকক এই অভিযানে সামৰি ল'ব। ৰাজ্যৰ 500খন বিদ্যালয়, 200 মহাবিদ্যালয় আৰু 100খন চৰকাৰী চিকিৎসালয় সামৰি এইচ আই ভি অভিযান চলোৱা হ'ব। মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে এককালীন বিশেষ অনুদানৰ অধীনত কালি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কৃষক আৰু মহিলাসকলৰ মাজত কৃষি সঁজুলি বিতৰণৰ বাবে এখন বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৰিৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নন্দিতা বৰুৱা, জিলা কৃষি বিষয়া, সদৌ মটক সন্মিলনৰ সভাপতি সম্পাদক, সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন, মটক মহিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব পুৱা 9 বজাত।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।

0: भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों

0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 crore रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 year डेडलाइन फॉर 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 new criminal laws। Delhi government

0: এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये

0: संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षो में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फौजी भाइयों, आज ईद मिलाद उन नबी है और ईद मिलाद उन नबी के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फौजी भाइयों, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों को लेकर मैं अर्चना एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आपके खिदमत में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें हमारा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हमारा आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

1:05 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार, और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे ईद मिलाद उन नवी के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम 1:10 से प्रादेशिक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से।

दो बजे आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम है प्रीत लड़ी, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों का प्रसारण समापन होगा दिन के 3 बजे। तो फौजी भाइयों, ये थी अग्रिम जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

तो फौजी भाइयों, अब सुनिए हमारा आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुनिए सनम रे फिल्म से गीत अरमन मलिक और पलक मंचल की आवाजों में।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत फौजी भाइयों अभी आप सुन रहे थे सनम रे फिल्म से अरमान मलिक और पलक मंचल की आवाजों में। अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत।

अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत गैंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस फिल्म से आवाज है जुविन गर्ग की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम एफ 279.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, अभी आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। और इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनाने के लिए लाए हैं कौसार मुनीर का लिखा और प्रीतम की संगीत पर।

और फौजी भाइयों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत।

फौजी भाइयों, अभी कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल गुरुवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण भी प्रारंभ होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा कल का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तरन्नुम।

1:05 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार, और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर छाया 1:10 से। प्रादेशिक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से।

दो बजे एक बार फिर से आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारा कल का अंतिम कार्यक्रम है गीत रंगीले, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और फौजी भाई, उस कार्यक्रम के साथ ही हमारा कल का प्रसारण भी समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी अग्रिम जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

फिल्मी नगमे कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये नगमा, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था नमक हराम। अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में एक नगमा, फिल्म का नाम है बाजार।

बाजार फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा लहू के दो रंग। इस फिल्म से सुनिए एक नगमा, आवाज है यशोदास की।

लहू के दो रंग इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये नगमा यशुदास की आवाज में। दिल्ली का ठग इस फिल्म से सुनिए एक नगमा, आवाज है आशा भोसले की।

फौजी भाइयों, आप एक कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से मीडियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे में।

तो फौजी भाइयों, कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला नगमा महबूब की महदी फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

और फौजी भाइयों, समय के अभाव के कारण यह गीत हम आपको पूरी तरह से नहीं सुना पाए, जिसके लिए हमें दुख है। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मी नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम आप अब से 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे 529.1 मीटर पर।

फौजी भाइयों, आज ईद ए मिलादुन नबी है और इस पावन अवसर पर आप सभी सैनिक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर हम आपको सुनाएंगे एक विशेष कार्यक्रम। भारत में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला मिलादुन्नबी आज पूरे भारत के साथ साथ असम में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 26 अगस्त है और आज ईद ए मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। यह पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस दिन इबादत, दुआ, नात, धार्मिक सभाएं, जुलूस और जरूरतमंदों की मदद जैसी आयोजन किए जाते हैं। ईद उल मिलाद नबी के बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं एक गीत।

मुस्लिम समुदाय के लिए यह दिन खास धार्मिक महत्व रखता है। इससे मिलाद उन नबी, मौलिद या मौलिद अन नबी अश शरीफ भी शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही मिलाद उन नबी आज भारत के साथ साथ पूरे असम में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज प्रार्थनाएं, धार्मिक सभाएं, पाठ दान पुण्य और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

भारत में मिलाद उन नबी मनाने का तरीका अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार कहीं धार्मिक सभाएं होती है तो कहीं जुलूस और दूसरे सामुदायिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस्लामी चंद्र कैलेंडर के रवि उल अव्वल महीने में आने वाला यह अवसर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद से जुड़ा है।

मस्जिदों में इबादत, कुरान की तिलावत और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। अब सुनिए अगला गीत।

फौजी भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर। और फौजी भाइयों, अभी हम आपको सुना रहे हैं ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।

और फौजी भाइयों, आज ईद ए मिलाद उन नबी है जो पूरे भारत के साथ साथ असम में भी मुसलमान समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कई जगह जुलूस निकाले जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। हालांकि इसे मनाने की तारीख को लेकर सुन्नी और शिया समुदायों में अंतर भी है। अब आइए सुनते हैं एक गीत।

इस्लामी परंपरा के अनुसार ईद मिलाद पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में मनाई जाती है। उन्हें इस्लाम का अंतिम पैगंबर भी माना जाता है। उनके संदेशों में एकेश्वरवाद, दया, न्याय, भाईचारे और इंसानियत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए इस दिन उनके जीवन और शिक्षाओं को याद किया जाता है। कई मुसलमान परिवार इस मौके पर घरों की सफाई और सजावट भी करते हैं। मस्जिदों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, नमाज अदा किए जाते हैं और जहां पैगंबर की सीरत यानी जीवन और आदर्शों पर चर्चा की जाती है। अब सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

और फौजी भाइयों, अभी आप ये गीत सुन रहे थे मेदुल ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर। अभी हम आपको सुना रहे थे ये विशेष कार्यक्रम, और इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से। अब से ये कार्यक्रम सुनेंगे केवल आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम 82.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रिक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत फौजी भाइयों आज हम आपको सुनाने के लिए लाए हैं चंद गुजराती गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मरहब हदास की आवाज में।

प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए मनहर उदास की आवाजों में आवाज में ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: demand for inclusion in India. The India Meteorological Department, IMD, has said that subdued rainfall activity is likely to continue over peninsula India during the next week. Heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. The Met Department has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 670,000 cubics of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirma Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।

0: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप सीम
1: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
0: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
2: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEA PG और AICEP

0: पीएचडी 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्त के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा

जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। समाचार के बाद आप सभी सैनिक भाइयों को हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं अर्चना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।

फौजी भाइयों, अभी आप सुनेंगे हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। युगल गीतों के कार्यक्रम प्रीत लड़ी में सुनिए पहला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है वाजीर।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के वाजू में अभी आप सुन रहे थे ये युगल गीत वाजिर फम से। अब सुनिए हरिहरण और अलका याग्निक को हकीकत फम से।

फौजी भाइयों, आप एक कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। मीडियम 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अभी हम आपको सुना रहे हैं हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी।

प्रीतलड़ी कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत कोई आपसा। यह फिल्म का नाम। इस फिल्म से सुनिए एक गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

प्रीतलड़ी कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में एक युगल गीत। फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1।

अब सुनिए प्रीतलहरी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, खिलाड़ी 420 फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

0: और फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत। इस गीत के साथ ही हमारा आज का प्रीत लड़ी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और अभी दिन के 3 बजने वाले हैं, साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम। कल दिन के 12:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। और अभी आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का अंक फिर एक बेहद खास अंक हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर आम समस्या है जिस पर हम आज बात करेंगे, और वो है किडनी स्टोन, यानी जो हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है वो बहुत आम हम सुनते हैं और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, हम आमतौर पर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बताते हैं कि अरे भाई ज्यादा पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा, या ये मत खाओ वो मत खाओ, पर क्या हम सही एडवाइस एक दूसरे को देते हैं ये कई बार हम खुद भी नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए स्टूडियो में, उनसे हम सही तरह से जाने कि ये पथरी जो होती है, किडनी स्टोन होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, और इससे जुड़े हुए जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो क्या है, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्या मिथक है और क्या इसके तथ्य हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेमंत गोयल। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। नमस्कार और स्वागत डॉक्टर हेमंत आपका।
4: धन्यवाद मैम, नमस्ते।
3: और जैसा मैंने बताया कि आज का विषय आप पुनः एक बार सुन लें, किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स, गुर्दे की पथरी, इससे जुड़े हुए मिथक और इससे जुड़े हुए तथ्य, ये बात करेंगे हम आज डॉक्टर हेमंत गोयल से। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, किडनी स्टोन्स हम सुनते बहुत हैं, पर ये होता क्या है और क्यों हो जाता है, ये दोनों कारण मैं जानना चाह रहे थे।
4: देखिए, किडनी स्टोन ये होता क्या है, जैसे कि कोई, ये बेसिकली पथरी है ना। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है दो तरीके से निकलते हैं मेनली, एक हमारे मोशंस में और एक यूरिन के थ्रू। तो हमारे काफी वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू या हम ईटिंग के थ्रू या लिक्विड के थ्रू जो हम लेते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी निकालती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो, अगर हमारी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पानी को निकालने में असमर्थ हो, तो वो पानी की तरह वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे किसी भी नाले में, अगर वो पानी साफ है, नदी में पानी बहता है, तो उसमें पत्थर नहीं जमते, नाले में धीरे धीरे वो जो इम्प्योरिटीज है वो जुड़ जाती है।

0: पहले छोटी छोटी पथरी बनाती है, उसके बाद वो पथरी को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे सारी पथरियां जुड़ के एक बड़ी पथरी बन जाती है, और फिर जो यही यूरिन है उसको रुकावट कर देती है, तो किडनी का काम करने में रुकावट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है।
1: तो ये पता लगता है पथरी होती है कि मुझे इस तरह के कुछ, उनको लक्षण पता लगते हैं क्या डॉक्टर साहब?
0: देखिए, ये बहुत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लक्षण दो टाइम पे होंगे। एक होगा शुरुआत में जब वो पथरी हमारी अटक रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे लक्षण आते हैं जरूर कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा जब वो पथरी इतनी बड़ी हो गई है और उसने पूरी तरीके से यूरिन को रोक दिया है, तब आएंगे किडनी फेलियर के लक्षण। तो बीच में जनरली ये किडनी स्टोन साइलेंट होते हैं, तो ये डैमेज भी कर रहे हैं मगर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। तो इसके लिए जब परेशानी होती है तो ये कर देना कि हाँ अब तो मेरा दर्द खत्म हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि दर्द खत्म हो गया मतलब स्टोन निकल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये यदि देखनी है, अगर आपको पथरी है तो आप उसका फॉलोअप कराइए, नहीं तो बिना दर्द के ही आपकी किडनी को खराब कर देगी, तब पता चलेगा।
1: ओके, तो ये काफी सीरियस टर्न भी ले सकती है, अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल जाएं, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पर जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी जब होती है, जब शुरुआत होती है, क्या तब भी कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है कि इस तरह का हो रहा है मेरे साथ, कि बिल्कुल जब पेन के लेवल पर पहुंच जाता है तभी पता चलता है?
0: वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो छोटी पथरी है उसमें सिम्टम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि छोटी पथरी हमारी किडनी से जो आगे एक नली होती है पतली सी, यूरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें गिरने के चांसेस हैं। जब पथरी एक बार बड़ी हो जाएगी तो वो आगे नहीं गिरेगी, क्योंकि आगे की पाइप छोटी है, तो किडनी में फंस जाएगी। तो जब वो छोटी पथरी होती है शुरुआत में तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे ही वो यूरेटर में गिरेगी पेशेंट को पेन होगा, तो उसमें तो सिम्टम आ जाएंगे, मगर एक बार पथरी बड़ी हो गई
1: तो
0: फिर सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो किडनी में ही बैठी है और किडनी में पेशाब रोक रही है और उसकी वजह से वो किडनी फूलती जा रही है और किडनी डैमेज हो सकती है। तो इनिशियल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। पेशेंट को पता होता है उसको 2 साल पहले पथरी का दर्द हुआ था, बट फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 2 साल पहले हुआ था, फिर तो मैं ठीक हो गया था, मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई खा ली जिससे मैं ठीक हो गया। फिर वो 2 साल बाद आता है कि जब पथरी बड़ी हो गई किडनी खराब हो गई। ये हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, तो वो 2 साल पहले के दर्द को इग्नोर ना करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखें निकली है नहीं निकली है, वो बहुत जरूरी है।
1: चलिए और भी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल इस समय मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ जो उनके मन में चल रहा है वो जरूर आपके साथ शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आज हम किडनी स्टोन्स पर विस्तार से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, समय निकालकर डॉक्टर साहब यहां आए हैं, तो फायदा उठाइए और जरूर पूछिए आपके जो सवाल हैं। हम खासतौर पर इससे जुड़े हुए जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं उस पर भी डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, पर पहले एक सुंदर सा गीत सुन लें। चलिए ये गीत सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप है रेडियो डॉक्टर में, बिल्कुल होश हवास में रहिए, लापता मत रहिए और हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। और आज इसी तारतम्य में हम जो किडनी स्टोन्स पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं। आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं, कॉल्स पर भी हम वेट कर रहे हैं आपकी, अगर आप हमसे पूछना चाहें तो जुड़ जाएं। पर डॉक्टर साहब, मैं यहां पर ये जानना चाहूंगी कि आपने लक्षण थोड़े से बताए कि किस तरह किडनी स्टोन के लक्षण दिख सकते हैं या उसको पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ उम्र दराज लोगों या वयस्कों में ही देखी जाती है समस्या, क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो बड़े बुजुर्ग या मिडिल एजेड लोगों को मैंने ज्यादा सुना है बोलते हुए। क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन हो सकता है?
1: अगेन ये सवाल, ये भी एक मिथ है कि ये बड़े लोगों को ही होती है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये स्टोन के पेशेंट आते हैं वो 20 से 50 साल के बीच में आते हैं, तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं स्टोन, मिडिल एज में भी दिखाई दिए जाते हैं और एल्डरली एज में भी देखे जाते हैं, पर सबसे कॉमन एज है 20 साल से 50 साल के बीच की उम्र की। तो सबसे कॉमन कारण तो यही है कि आदमी पानी कम पीते हैं या किसी प्रकार का फ्लूइड कम लेते हैं तो वो स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते, तो या फिर वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि पसीने बहुत आ रहे हैं बट पानी का इंटेक कम है। जैसे अगर आप राजस्थान देख लीजिए तो वो एक स्टोन बेल्ट बोली जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीने इतने आते हैं बट पानी का इंटेक उतना नहीं है, तो वहां पर जनरली स्टोन बड़े बड़े स्टोन पाए जाते हैं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर हमारा पसीने इतने नहीं निकलते, ठंडे इलाके, तो वहां स्टोन कम पाए जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, मगर सबसे कॉमन 20 से 50 साल की उम्र में होते हैं और वो किसी भी उम्र में पाए जा सकते हैं।
0: पर इसका कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि पेरेंट्स को है तो चांसेस बढ़ते हैं कि बच्चों को हो जाए?
1: देखिए, जेनेटिक नहीं होता इसमें जनरली, इसमें मगर फैमिलियल बोलेंगे, जो हेरिडिटरी फैक्टर इसमें है वो डाइट रिलेटेड है। जनरली देखिए, एक फैमिली में एक तरीके की डाइट ही फॉलो की जाती है। अगर आप गुजराती लोगों में देखेंगे तो वो कॉमन डाइट है, अब राजस्थानी में देखेंगे वो एक डाइट है, साउथ इंडियन होंगे तो उनकी डाइट सेम है। तो इट्स मोर रिलेटेड टू डाइट की डाइट से, कि वो डाइट तो वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, पानी का इंटेक भी वो वैसे ही लिया जाएगा, है ना। किसी की डाइट में जैसे हम जब जैसे इसमें बोलते हैं कि नमक का इंटेक, है ना, सोडियम अगर हमारी डाइट में ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है स्टोन बनने के। तो हम जो प्रिकॉशन पेशेंट को बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए, सोडियम थोड़ा सा कम लीजिए, जैसे हम मसाले हो गए, चटनी हो गई, अचार हो गए, इसका इंटेक हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम बंद मत करिए, कैल्शियम मॉडरेट कैल्शियम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंगे कैल्शियम इंटेक तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सैलेट कम करें, आप पेशेंट बोलते हैं ऑक्सैलेट क्या होता है, ऑक्सैलेट जैसे चोको पाउडर है, कोको पाउडर है, इन सब चीजों में ऑक्सैलेट लेवल ज्यादा होते हैं। आजकल हर जगह AI आ गया है, तभी भी आप ये चीजें डालेंगे कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो वो डाइट में चेंज करने में बहुत समय लग जाता है, मगर आप इनिशियली अगर हम आज भी ट्राई करेंगे 2-3 महीने में हम उसको अपनी हैबिट में लेकर
0: बहुत अच्छे से मजबूत इरादा करना पड़ता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना।
1: ये अगर मैं बचपन से मेरे घर में सब लोग अचार खा रहे हैं तो उसको छोड़

0: ना भी 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में बहुत आसान चीज नहीं है। तो मगर जब आपको रिकरेंट, आपको पता है कि ये इतना सीरियस ले सकती है मूड, तो फिर आपको जब उसकी अवेयरनेस आ जाएगी तो वो चीज छूट जाएगी
1: जी। तो बेसिकली खान पान और पानी, ये दो चीजें इसके मेजर फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं।
0: साथ ही साथ अगर डायबिटीज भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, वो भी फैमिली में चलता है। तो डिजीजेस जो फैमिली में चलते हैं उनमें इंसिडेंस स्टोन के ज्यादा होंगे, पर से स्टोन जेनेटिक नहीं होता।
1: तो डायबिटीज अगर किसी को है तो क्या उसको पथरी भी होने के चांस?
0: बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और खासकर यंग एज में बहुत कॉमन है। हमारे पास जितने भी 20-30-40 साल के लोग आते हैं स्टोन के साथ, फर्स्ट टाइम स्टोन फॉर्मर, तो डायबिटीज बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं कि उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन या कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन भी कॉमन, थोड़े इंसिडेंस ज्यादा है। तो डायबिटीज का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये फैमिलियल होता है। तो आपको जिसको डायबिटीज है उसको स्टोन के चांसेस भी ज्यादा है और उसको स्टोन की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा है,
1: तो उन्हें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा,
0: ज्यादा ध्यान देना
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान पान की बात बताई, कैल्शियम और ऑक्सलेट की बात बताई, जो ज्यादातर सुना जाता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में बीज हों तो उसको नहीं खाना चाहिए, ये कितना ये मिथ है कि ये फैक्ट है?
0: ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, कि ये भी हमारे से पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं कि जिस भी चीज में बीज है तो उससे स्टोन बन जाते हैं। ये बिल्कुल मिथ है, कोई भी बीज हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर यूरिन में नहीं जाता, है ना। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है, और वो सब हमारा जो जीआई सिस्टम है, जो हमारा ओरल सिस्टम है, वो इतना अच्छा है कि जो भी यूजलेस चीज होगी उसको वो मोशन में निकाल देगा। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेनली इसमें जो आप क्या चीज खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब बहुत सारे यंग लड़के होते हैं जो जिम जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो सप्लीमेंट में क्या ले रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, हैवी मिनरल्स ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी, हमारी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे पानी ज्यादा लेना है, कैल्शियम मॉडरेट इंटेक लेना है, नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं लेना, मॉडरेट लेना है, एनिमल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो एनिमल प्रोटीन अगर ज्यादा लेंगे तो उसमें फिर क्रिएटिनिन और ये सब चीजें ज्यादा होंगी जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी होगी, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। तो आपको नॉर्मल एनिमल प्रोटीन लेना है, तो ये सारी ऑक्सलेट आपको नॉर्मल ऑक्सलेट लेना है या ऑक्सलेट रिस्ट्रिक्शन करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डाइट में देखोगे कि मेरी डाइट में ये किस चीज में ज्यादा है, और तब आप कम कर पाओगे। जो नॉनवेज खाता ही नहीं उसे मैं बोलूंगा नॉनवेज कम खाओ, तो खाता ही नहीं है, तो ये तो उसको खुद ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी।
1: और बहुत मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो इजी तो नहीं है कि ये सोचना कि मैं ये मॉडरेट खा रहा हूं या मेरा एक्सेस हो रहा है, तो क्या कोई टेस्ट कराकर फिर आदमी उस हिसाब से करे? क्योंकि बहुत आम बात है आजकल लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, आयरन सप्लीमेंट लेना, कि अब चलिए 50+ हो गए हैं तो ये लेना शुरू कर दीजिए, ये कमी ही होगी, B12 ले लिया, विटामिन डी ले लिया, इट्स सो कॉमन, तो क्या ये भी नुकसानदायक हो सकते हैं?
0: तो देखिए मैम, क्या होता है कि हम अपनी डाइट में हम तोल के या ग्राम से तो खा नहीं सकते
1: जी।
0: तो डाइट तो हम वही लें जो हम ले रहे हैं, जिसकी हमें हैबिट है, हम उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। कि मैं अगर कोई हमें, जैसे एक बहुत बड़ी मिथ है कि दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, वो कहते हैं कैल्शियम होता है दूध में, दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, दूध में बहुत अच्छा लिक्विड कंटेंट है, इट इज वो बहुत न्यूट्रिशियस है, उसको पीने से कहीं से भी स्टोन नहीं होते। तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज से हो सकते हैं। अगर मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रहा हूँ, तो अगर हमारी मेरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने दो दी है तो मैं एक ले लूँ, मैं मॉडरेट अमाउंट लूँ, तो मुझे हमें पता है। अगर मैं कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बहुत हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं प्रॉब्लम यह है कि स्टोन हो गया, तो हम ये बनाते हैं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं इस वजह से स्टोन हो गया, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इतना पसीना वहां पर बहा रहे हैं, उतना फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे, जिसकी वजह से स्टोन है। तो हर इंडिविजुअल को अपना ना खुद ही बॉडी लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि कहां वो गलती कर रहे हैं, और फिर इसमें जो हेल्प कर सकते हैं डाइटिशियन हेल्प कर सकते हैं। डाइटिशियन बता सकते हैं कि आपका जो खा रहे हैं, आप 3 दिन का उन्होंने बोला कि आप क्या क्या खा रहे हैं बताइए, तो वो उसमें देख लेंगे क्या इसमें थोड़ा कैल्शियम कम कर दीजिए इसमें, तो वो डाइट का मॉडिफिकेशन बता सकते हैं।
1: तो डाइटिशियन कस्टमाइज होना चाहिए,
0: कस्टमाइज होना चाहिए, आप जनरल नहीं बोल सकते, मगर हम मोटी मोटी ओपिनियन तो दे देते हैं पेशेंट को, बट अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और देखना चाहे तो वो डाइटिशियन को बता सकता है ये मेरी डाइट है, इसमें मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मॉडरेट कैल्शियम ऑक्सलेट कम होना चाहिए और एनिमल प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए, मेरा फ्लूइड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। बट एक इंटेलिजेंट पेशेंट समझ जाता है कि सोडियम कैसे कम करना है, कैल्शियम मुझे बहुत ज्यादा नहीं लेना, मुझे एनिमल प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना, मुझे फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है। बट घूम घुमा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूइड इंटेक है। फ्लूइड इंटेक अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, हाइड्रेशन इतना कि आपका यूरिन साफ आ रहा है, आपका क्लियर यूरिन आ रहा है, मतलब आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, तो आपको स्टोन होने के चांसेस भी कम है, और अगर स्टोन हो जाते हैं तो वॉश आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है।
1: तो कितना यूरिन इंटेक होना चाहिए?
0: यूरिन का देखिए, आपका फ्लूइड इंटेक जो है वो मौसम के हिसाब से है, आप किस जगह पे रह रहे हो,
1: मतलब वाटर इनटेक भी मौसम के हिसाब से,
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि जितना आपका पसीना बहेगा, जितना वाटर लॉस हो रहा है उसके उसी हिसाब

0: से होगा। अगर आप बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं या गर्मियों में, हम बोलते हैं पेशेंट कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, मगर यही सर्दियों में हम बोलते हैं 2.5 से 3 लीटर या 2.5 से 3.5 लीटर पानी एडिक्वेट है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पानी पी रहे हैं, जब आप कम पानी पियेंगे तो यूरिन थोड़ा येलोइश आएगा। तो ज्यादा येलोइश आ रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। अगर यूरिन आपका पानी की तरह आ रहा है मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं। उसके ओवर एंड अबव ज्यादा पानी पीने का कोई फायदा नहीं है।
1: तो ये सेल्फ चेक किया
0: ये सेल्फ चेक कर सकते हैं, यूरिन का कलर देख सकते हैं, वो पानी की तरह तो आपका हाइड्रेशन अच्छा है।
1: ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते जी।
1: हाँ, अपना नाम बताइए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। अपना नाम बताइए, क्या पूछना चाहते हैं फिर पूछिए।
2: मैम मेरा नाम महेश है। मैम मेरा भाई है, उनके पति है मैम। तो कभी दर्द होता है तो इतना दर्द होता है कि उस टाइम हम खुद होपलेस से हो जाते हैं। उस टाइम मतलब क्या करना चाहिए कि दर्द थोड़ा राहत हो जाए, जैसे हॉस्पिटल दूर है तो फिर वहाँ तक थोड़ा राहत मिल जाए।
0: देखिए ये बिल्कुल कॉमन गलती जो सब करते हैं वही आप कर रहे हैं। जब आपको पता है स्टोन है तो आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं कि जब वो दर्द हो तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं। आज जब दर्द नहीं हो रहा तो आप इलाज क्यों नहीं करा रहे। तो यही गलती जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से जब आदमी की किडनी फेलियर हो जाती है तब उनको लगता है कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि भाई हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको पता है आपके मरीज को स्टोन की प्रॉब्लम है, अब आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं। तो यही तो वेट नहीं करना आपको, अब आज दिखाइए डॉक्टर को, वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, सीटी स्कैन कराएंगे, बताएंगे आपके मरीज को इलाज की जरूरत है नहीं है।
1: तो आपको समझ में आ गया, आपको लेके जाना है फौरन, है ना डॉक्टर साहब, उनके फर्दर चेकअप्स कराने हैं और जैसा डॉक्टर साहब बताएं उनको फर्दर ट्रीटमेंट कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी। और ये एक हमें मैसेज आया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी ने लिखा है उज्जैन से, कि यूरिन करने के बाद तुरंत क्या पानी पिया जा सकता है।
0: देखिए खंडेलवाल जी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप पानी और यूरिन मतलब कोई रिलेशन नहीं है। आपको जब पानी पीना है तब पानी पीजिए। तो यूरिन की तो जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसमें उसको आप टाइम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, तो आप पानी ठीक पी रहे हैं
1: जी। देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से, नमस्कार। और डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमें अच्छी लग रही है, तो बहुत धन्यवाद। यही बात हमें लिखकर भेज रहे हैं हितेंद्र दास जी आसाम से, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सही जगह पर मैसेज कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर हमें भेजिए। और जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें निरंतर सुनती हैं और लगभग प्रतिदिन प्रश्न पूछती भी हैं, धन्यवाद जोया जी। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर बिकॉज आई फील थर्स्टी एंड देन गो टू पास यूरिन फ्रीक्वेंटली, डू दैट इम्पैक्ट किडनी, एक ये उनका क्वेश्चन है। और व्हेन आई एम अनेबल टू गो टू टॉयलेट एज स्टक इन ट्रैफिक जैम टू गिव बिट ऑफ पेन इन माई राइट किडनी, इज दैट अलार्मिंग।
0: देखिए जोया जी, इसमें ना दो सवाल है, एक तो है कि आपको प्यास बहुत लगती है और आप यूरिन बहुत भर जाते हैं
1: जी।
0: तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन भी ज्यादा जाएंगे, तो डायरेक्टली रिलेशन। अगर 10 लीटर पानी पीऊंगा तो 8 या 9 लीटर यूरिन आएगा, है ना। 8-9 लीटर के लिए मतलब हर आधे घंटे में जाना पड़ेगा अगर आप टाइम के हिसाब से लगाएं तो। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न ये कि प्यास इतनी क्यों लगती है, उसके दो कारण होते हैं। या तो किसी को आदत हो गई है ज्यादा पीने की, जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं कि अब आदत हो गई है कि मुझे ज्यादा पानी पीना है ना। दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्यास बहुत लगती है। सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज है, डायबिटीज में प्यास भी ज्यादा लगती है और यूरिन भी ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेकअप करा सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायबिटिक हैं आप या प्री डायबिटिक हैं जिसकी वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है। दूसरी बात जो आपने बोला कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं और आप वो उस टाइम पे आप यूरिन नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो आपकी किडनी में तो नहीं मगर ब्लैडर में जरूर पेन होगा, क्योंकि वो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा अनलाइकली है कि किडनी में पेन हो, मगर आपका जो नाभि का एरिया उसके नीचे आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आपका पेशाब की थैली ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं वो यूरिन से भर गई है, तो उस वहां पर पेन हो सकता है। तो उसका तो यही है कि अगर यूरिन पानी ज्यादा पी रहे हैं तो यूरिन ज्यादा बन रहा है, ब्लैडर हमारा स्टोरेज है उसमें स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जब वो भर जाएगा ज्यादा तो पेन होगा।
1: पर इन्होंने ये भी लिखा है डॉक्टर साहब कि कभी ज्यादा देर हो जाती है तो राइट साइड में किडनी में पेन होता है, तो
0: ऐसा बड़ा अनलाइकली है। कभी कभी ब्लैडर का पेन रेफर कर सकता है राइट साइड में, बट थोड़ा सा सुप्रा प्यूबिक पेन ज्यादा कॉमन है ऐसी कंडीशन में।
1: अच्छा, फिर भी एक बार दिखाएं तो
0: एक बार दिखाना तो चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीना और यूरिन ज्यादा, पानी ज्यादा पीने के साथ तो यूरिन ज्यादा आ सकता है, बट पानी ज्यादा क्यों पी रहे हैं उसके लिए चेकअप कराना चाहिए।
1: और एक ये हमारे पास प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का, शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि मेरी पुत्र वधु के कुछ साल पहले पथरी का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन कहा जाता है कि वापस पथरी बन जाती है, क्या हर साल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अगर हम हर साल कराएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड का।
0: देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, ये भी एक मिथ है कि एक बार पथरी निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। देखिए कम से कम

0: जिसको पथरी बन रही है उसको 50% चांस है कि उसको लाइफ में फिर से पथरी बनेगी।
1: क्यों तो ऐसा क्यों है?
0: क्योंकि उनकी ना डाइट चेंज होती है,
1: अच्छा,
0: ना उनका पानी पीने का ये चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, और जो उनको टेंडेंसी जो टेंडेंसी से उनको बना था वो तो करेक्ट नहीं किया, वो वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं। तो इसलिए देखा गया जिनको पथरी बनती है उनको 50% फिर से लाइफ टाइम में पथरी बनेगी। तो इसके लिए जिनको पथरी बनी कम से कम उन लोगों को हर साल अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो हर साल कम से कम अल्ट्रासाउंड करा लें तो पता चल जाएगा पथरी जब बनी इनिशियल फेज में पता चल जाएगी पथरी बन गई। तो जिनको स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ उनको पक्का कराना है। प्लस मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पेशेंट हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो आयुर्वेदिक दवाई ले ली और उससे मेरी पथरी निकल गई है ना, तो ठीक है आपको डॉक्टर ने बोला बिना अल्ट्रासाउंड किए कि पथरी निकल गई, ये बहुत गलत है। आपको कोई भी दवाई दे, हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बिलीव करते हैं हम भी, तो आपको दवाई दी आपकी उन्होंने बोला पथरी निकल गई फिर भी अल्ट्रासाउंड करा के उस चीज को आप वेरीफाई कराइए पथरी निकली या नहीं निकली। 90% केसेस में पथरी नहीं निकली होती और पेशेंट को बाद में पता चलता है जब वो बहुत लेट हो चुका होता है।
1: जी, और इसका कोई और ट्रीटमेंट भी हो सकता है जैसे कि होम्योपैथी, और अभी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी क्लेम किया जाता है, आयुर्वेदिक में भी क्लेम किया जाता है, तो इस तरह से क्या एलोपैथी में भी कोई दवाई है या सिर्फ सर्जरी ही एक सोल्यूशन है?
0: मैम देखिए मैं फिर दो चीजें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर पथरी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लोगों में मिथ है कि भाई किडनी स्टोन में अल्ट्रासाउंड में पथरी आ गई अब तो ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। जनरली 6 mm से छोटी पथरी, जो हमारे पास जितने भी अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 50% पेशेंट में 6 mm से छोटी पथरी होती है जो इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड पे मिल जाती है। मैंने मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड कराऊं क्या पता उसमें 3-4 mm की पथरी आ जाए। तो 6 mm से छोटी पथरी को जनरली अगर वो अड़ नहीं रही, वो रुकावट नहीं कर रही, बहुत छोटी पथरी भी कभी कभी रुकावट कर सकती है मगर जनरली नहीं करती, तो उस केस में उनको हमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में हम उनको दवाइयों से, एल्कलाइजर से, अपनी डाइट से, अपना लिक्विड इनटेक से वॉश आउट कर सकते हैं। किडनी का बॉडी का भी अपना नॉर्मल मैकेनिज्म होता है छोटी छोटी पथरी को निकाल देने का, वो निकल जाता है। हम उन पेशेंट को बोलते हैं आप मॉनिटर करिए, कोई दर्द हो तो आइए, नहीं तो 3-6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करिए, बहुत चांसेस है ये निकल जाएगी। सिर्फ बड़ी पथरियों के लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है या जो पथरी फंस रही है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। तकरीबन 2 cm से छोटी पथरी का बिना ऑपरेशन के भी इलाज कर सकते हैं।
1: जी, तो अलग अलग किस तरह से सर्जरी की जाती है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, साथ ही साथ आकाशवाणी के प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम फोन लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, सतीश गाजियाबाद से।
1: जी सतीश जी, बताएं क्या।
2: मैंने रेडियो अभी खोला है।
1: जी जी, आपको विषय पता चल गया है ना।
2: हाँ, मैं उसी विषय पे ही बात करूंगा।
1: जी बताएं।
2: एक्सपर्ट कहते हैं कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। तो क्या अगर किसी को कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो भी नॉर्मल आ रहा है, तो उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कोई मेडिसिन की जरूरत है?
3: थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वैसे हम रीनल स्टोन्स की बात कर रहे हैं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।
4: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी प्रश्न पूछे राजेंद्र जी।
4: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
3: नमस्ते।
4: पहला सवाल तो है कि आज से ना 6 महीने कबल मेरी डाइट जो है 24 घंटे में मैं यही कोई 10 फुलके खा जाया करा, 2 फुलके सुबह, 4 दिन में, 4 शाम को। पर अब मैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 ही फुलके खा पा रहा हूँ। और मेरे पेट में ना मतलब गैस बनती है और पेट भारी भारी हैवीनेस रहती है और जलन गर्मी भी पेट में होती है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई पेट में तो कई पार्ट्स में जो है वो पथरी हो सकती है, तो क्या ये किडनी स्टोन के सिम्टम हो सकते हैं?
3: ये किडनी स्टोन का सिम्टम नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर के सिम्टम है, तो पेट में जो छाले हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए मेडिसिन या गैस्ट्रो में दिखाना पड़ेगा, ये किडनी स्टोन के सिम्टम नहीं है।
4: किडनी स्टोन से क्या थायराइड या टॉन्सिल का कोई कनेक्शन है?
3: किडनी स्टोन का
4: थायराइड किसी को है, टॉन्सिल, तो किडनी स्टोन से रिलेशन है?

0: जनरली डायबिटीज से होता है और पैराथायरॉइड से होता है, एक ऑर्गन होता है थायराइड के पीछे पैराथायरॉइड, तो वो जिसमें बढ़ जाता है उसमें बहुत ज्यादा स्टोन के चांसेस होते हैं, मगर थायराइड से जनरली डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि पेन, जैसा ये भी बता रहे थे अभी कर्णपुरा से राजेंद्र जी, कि इनको अनइजनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है, कई बार ये भी देखा जाता है कि पेन हो रहा है, आपने बताया है कि पेन होता है जब स्टोन होता है, और कुछ लोग जो है पेन किलर खा लेते हैं, उनको ये लगता है पेन हो रहा है, पेन किलर खा लेंगे हमें आराम मिल जाएगा, या उन्हें पता नहीं लगता कि इसके लिए मुझे जाना ही चाहिए, तो पेन किलर इस तरह से कोई हैबिचुअल खा रहा है जब पेन होता है तो कितना हार्मफुल हो सकता है?
0: मैम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी दवाई वो खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अगर देखिए कोई भी दवाई हम 2-3 दिन के लिए खा रहे हैं तो जनरली वो रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, वो दिक्कत नहीं है, बट कोई भी दवाई आप लंबे टाइम के लिए खा रहे हैं या आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ रही है तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए पेन किलर आपका दर्द तो कम कर देंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि थर्ड कॉमन कॉज रीनल फेलियर का पेन किलर इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। तो जो लोग ये ब्रूफिन या पिंक कलर की दवाइयाँ खाते हैं कि भाई मेरे को दर्द होता है मैं तो दवाई खा लेता हूँ, तो ये तीसरा सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है। लाखों से ऊपर लोग हैं जिनकी पेन किलर खाने की वजह से किडनी फेलियर होती है, और एक किडनी नहीं दोनों जाती हैं जब जाती हैं।
1: अच्छा।
0: तो उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है या ट्रांसप्लांटेशन पे आना पड़ता है, तो बड़ी मेजर चीज है। आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उनको पता है, बताएंगे कि सबसे दो चीजें वो पूछते हैं कि आप बार बार दवाई, दर्द की दवाई तो नहीं खाते थे और आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं खाई पेन किलर के लिए? जो चूर्ण वूरण होते हैं इसमें बहुत हैवी मिनरल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं सॉरी, तो उन हैवी मेटल्स से एक्चुअली जो तो कोई आप दवाई लें उसके बारे में आपको कहीं लिटरेचर पता होना चाहिए कि आप ये 6 महीने के लिए दवाई खा रहे हैं, तो ये उन दवाइयों में इतना हैवी मेटल्स होता है कि जिसकी वजह से पेन आपकी किडनी फेल हो जाती है। और ये बहुत कॉमन हम देख रहे हैं यंग बच्चों में, 25 साल 30 साल के बच्चे, उनकी एक हिस्ट्री होती है मैंने किसी जो झोला छाप टाइप डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली थी पेन, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, वो एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है, उन्होंने बस कहीं से सीख लिया और उन्होंने कुछ दवाई दे दी। तो प्रॉपर मेडिसिन में हर चीज रिसर्च के साथ होती है, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च की वाली दवाई दे देते हैं, लोग खा लेते हैं, किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, पेन किलर का रेगुलर यूज ना करें, वो पेन किलर सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि कभी आप घर बैठे हैं और आपको पेन ज्यादा दर्द हो गया तो आपने दवाई खाई और डॉक्टर के पास चले गए।
1: जी ये बहुत जरूरी बात है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में? जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी।
0: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब। नमस्कार।
0: नमस्ते जी
2: डॉक्टर साहब। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था अपने आप ही, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्टोन की वजह से करवाया था, तो मेरा अल्ट्रासाउंड निकला कि आपका यूरिन का रिटेंशन हो जाता है PVR, मतलब तो, क्योंकि एक बार में यूरिन नहीं निकलता तो रह जाता है।
0: स्टोन तो आपको नहीं है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
2: यूरिन का रिटेंशन हो जाता है एक बार में नहीं होता
0: नहीं,
2: क्लियर?
0: अगर आपको सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाने चाहिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे अगर यूरिन रुक रहा है अंदर तो वो बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं है, किसी को 100 ml रुक सकता है, किसी को 50 ml रुक सकता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं। जब तक आपको परेशानी ना हो कि आपका यूरिन धीरे धीरे हो रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में 3-4 बार उठना पड़ रहा है, फ्लो कम है आपको, स्ट्रीम पुअर है, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज सिर्फ प्योरली अल्ट्रासाउंड पे अगर PVR बढ़ा हुआ है तो उसमें जनरली कोई भी डॉक्टर आपको कोई बोलेगा कि आप ठीक हो।
2: थैंक यू।
0: ठीक है जी।
1: जी ये हमारे पास एक मैसेज है, वैसे ये स्टोन से रिलेटेड तो नहीं है, आप देखें अगर आप जवाब देना चाहें तो, ये 49 इयर्स की हैं सुमन देवी, और ये लिख रहे हैं कि मेरी मम्मी का नाम सुमन देवी है और उनको किडनी में मल्टीपल सिस्ट है और इनको बताया है ADPKD शायद बताया है डॉक्टर ने, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं?
0: देखिए इसमें आपको जो मल्टीपल सिस्ट और ADPKD बताया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो डॉक्टर ने बता दिया होगा कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है, अदरवाइज ये सिस्ट कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। तो आपको एक रेगुलर फॉलोअप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रहना चाहिए, जो अब ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का मेडिकल वाला इलाज करते हैं, तो इसमें सर्जरी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर करिए कि कल को हाइपरटेंशन बनती है तो ये किडनी डैमेज हो सकती है, अदरवाइज ये ठीक चलेंगी।
1: हमारे एक साथ हमारे एक कॉलर है। हेलो।
3: हेलो।
1: नाम बता।
3: नमस्कार सर।
1: जी
3: साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी।
3: सर ये जो इसका किडनी का जो ऑपरेशन होता है आजकल कते रोबोटिक या AI से ये पॉसिबल है? और दूसरा जो है ये जैसे किसी को ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी है वो उसको तो बिना पेन किलर खाए हुए रह ही नहीं सकता होल लाइफ?
0: देखिए ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी या न्यूरोजेनिक पेन होगा तो उसके लिए उस वो वाली दवाई पेन किलर दिए जाएंगे जो किडनी को डैमेज नहीं करते। जब भी डॉक्टर आपको देते हैं ना लंबे टाइम के लिए तो वो ऐसी दवाई देते हैं जिससे किडनी डैमेज ना हो, है ना? मैं आपको उन पेन किलर्स की बात कर रहा हूँ जो कॉमन पेन किलर हैं वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं, बट ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी हो गया या आपको गाबापेंटिन दे रहा है

0: कोई, तो वो वाले पेन किलर रहते हैं जो किडनी को डैमेज नहीं करते, तो हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट आपको वही दवाई देगा, है ना। कोई भी डॉक्टर आपको 6 महीने के लिए पेन किलर ऐसा नहीं देगा जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाए। आज की डेट में जो नई थेरेपीज आ रही है, है ना, मेडिकल में जो ऑपरेटिव थेरेपीज आ रही है समय समय के साथ, पहले जो हम ऑपरेशन करते थे समझ लीजिए अगर हमारे को कोई 10,000 का खर्चा आता था तो आजकल 1,00,000 का खर्चा आता है। तकनीक, बेहतर तकनीक आ गई है, वो महंगी भी है तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अब कौन कहां पर कितना पैसा मांगता है वो तो हम यहां पर हमारा डिस्कशन नहीं है, मगर ट्रीटमेंट महंगे हो गए हैं क्योंकि अभी हर चीज भी महंगी आ रही है। कि अगर आपका जहां तक आपका सवाल है, रोबोटिक इसमें नहीं होता मगर एंडोस्कोपिक होता है, जैसे लेजर या RIRS जो टेक्निक बोलते हैं उसको लेमैन में रोबोटिक बोलते थे, बट रोबोट का एक्चुअली इस्तेमाल इन स्टोन की सर्जरीज में नहीं होता, वो किसी और सर्जरीज में होता है।
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर्जरी की बात चल रही है तो हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, कि इसका ट्रीटमेंट के लिए किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको क्या है। जैसे बोल रहे हैं AI है या आपने बताया एंडोस्कोपिक ही होता है, बट होते क्या क्या है उसमें?
0: देखिए, जो पहला सवाल है कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अल्ट्रासाउंड पे स्टोन आ गया तो मतलब आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटे स्टोन होंगे या फिर जो स्टोन नहीं अड़ रहे तो उनको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको हम बस आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 3 से 6 महीने में उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जब पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट में 3 तरीके के ट्रीटमेंट मेनली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं बिना ऑपरेशन वाली, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी बोलते हैं ESWL, वो एक ट्रीटमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से कम स्टोन में, अब ये बात नहीं कि 2 सेंटीमीटर सब 2 सेंटीमीटर के कम स्टोन में हम ESWL दे देंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी है, मशीन से बिना ऑपरेशन के हम स्टोन तोड़ सकते हैं। एक तो वो ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट है कि जो हम कमर से एक छोटा सा इंसिजन लगा के 0.5 सेंटीमीटर का, जिसको PCNL बोलते हैं, उसमें किडनी में कितने बड़े स्टोन हो वो हम निकाल सकते हैं। तो और तीसरा ट्रीटमेंट है जो आपके इंसिजन के बिना बोलते हैं, कि वहां पर हम दो सेंटीमीटर के जो छोटे स्टोन है जो ESWL से नहीं टूट सकते वो हम RIRS के थ्रू, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट ढूंढने में, जो ये सारी टेक्निक जिसके पास है, और लेट हिम चूज, उसको चूज, आपने आपकी रिपोर्ट देख लिया, अब उसको देखने दीजिए, आप उनसे पूछिए आपके पास ESWL भी है, RIRS भी और PCNL भी है, अगर उनके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप उन पे छोड़ दीजिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप बताएंगे कि मैंने AI से पढ़ लिया कि मेरे को तो ये ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पर डॉक्टर, वहां डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, बट हाँ उसके बाद ऑप्शन सारी होनी चाहिए। मैं एक जगह बैठा हूँ जहां पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तो फिर तो मैं पेशेंट को एक ही ऑप्शन दूंगा। आपका काम है ये देखना कि हाँ इनके पास सारी ऑप्शन है, उसके बाद ट्रीटमेंट उन्हें डिसाइड करने दीजिए।
1: जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सलमा बेगम जी ने, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून शाली मैम एंड डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अगर पित्त की थैली में स्टोन होता है तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इलाज है, और स्टोन अगर किडनी में है और दर्द भी नहीं है तो उसको क्या सिस्टम हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया हो? तो ये सारी बातें हमने अभी कवर कर ली है मेरे हिसाब से, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये काफी चीजें डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में भी था कि एक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जब पुरानी बात करें खान पान से लेकर रहन सहन, बच्चों का एक स्टाइल डिफर हो गया, उसी तरह की एक बात हमारे एक श्रोता भी पूछ रहे हैं कि पहले बहुत कम सुनने में आता था खान पान जो समय था या जो सारे लोग मेहनत करते थे चलते थे तो पथरी कम सुनने में आती थी, अभी आजकल क्या फास्ट फूड का जमाना है इसलिए पथरी ज्यादा सुनने में आ रही है, ये पूछना चाह रहे हैं नरदेव सिंह चौहान कोटदार।
0: ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है कि आज की डेट में खान पान तो खराब हुआ ही है, वो सब हर चीज देखिए समय के साथ साथ चीजें अच्छी से, पहले जो हमारा देसी लाइफस्टाइल था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं गांव से और 80 साल में भी हट्टे कट्टे होते हैं और मुझे पूछते हैं हम क्या खाएं, हम तो उनको ये बोलते हैं जो खा रहे हो वो खा लीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा ले आइए क्योंकि वो ही ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस तो है, ठीक है ना, मगर आप जो एक दूसरी चीज बोल रहे हैं कि एक और इसका एंगल है कि पहले इतने अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते थे, इतनी इमेजिंग ही अवेलेबल नहीं थी गांव में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था स्टोन हो रहे होंगे, मगर क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रहे तो वो इंसिडेंस कम लगता है। तो क्योंकि आज की डेट में 2 तरीके से स्टोन बढ़ गए, एक तो हमारा बहुत अल्ट्रासाउंड बहुत इजिली अवेलेबल हो गए, कोई भी अल्ट्रासाउंड जाके करा सकता है, उसको पता चल जाता है स्टोन, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, और दूसरी चीज है लाइफस्टाइल डेफिनेटली खराब हुआ है, पिज्जा और ये सारी चीजें, हम ज्यादा नमक की और पानी के इंटेक बहुत कम हो गया, बच्चों को याद ही नहीं रहता कि, या हमको भी याद नहीं रहता था बहुत टाइम पहले तक जब हम पढ़ते थे कि कब हमें पानी पीना है, हम सुबह जाते थे शाम तक पढ़ते रहते थे और पानी का इंटेक कम होता
1: जी,
0: था
1: जी, जी। तो ये सॉल्ट, जैसे आपने कहा सॉल्ट भी रीजन हो सकता है, तो वो सॉल्टी फूड्स और ज्यादा लेते हैं।
0: आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं कितने स्टूडेंट्स को आदत है पानी की बॉटल कैरी करने की, हार्डली 5% होंगे।

0: 95% सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं बैग लेके, तो वो हैबिट होनी चाहिए कि आप अपनी पानी की बोतल कैरी कर रहे हैं और बीच बीच में हाइड्रेशन मेंटेन रखें।
1: जी, जैसे पहले सिखाया जाता था कि निकल रहे हैं बाहर तो पानी पी के निकलो, घर आ रहे हैं तो पियो, तो वो शायद कुछ आदतें ऐसी हैं जो अगर हम दोबारा से शुरू कराएं घर में बच्चों।
0: कहीं ना कहीं मतलब आप देखिए कॉलेज स्टूडेंट कोई पानी की बोतल ले जा रहा है तो वो एक तरीके से उसको एक सिंबल आ रहा है कि ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पानी की बोतल ला रहा है, टिफिन ला रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। पहले ये पॉजिटिव होता था कि अपनी पानी की बोतल ला रहे हैं, अपना टिफिन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो है।
1: जी, अच्छी हैबिट्स को हम अगर कोशिश करें कि बढ़ावा दें तो ज्यादा अच्छी बात है। और जैसे स्ट्रेस की भी बात करते हैं, स्ट्रेसफुल बहुत लाइफ है, लोग अननेसेसरी स्ट्रेस भी लेने की आदत पड़ चुकी है, तो क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्ट करता है और स्टोन को बनाने में मदद करता है?
0: देखिए ओवरऑल तो बॉडी की हेल्थ को खराब करता ही करता है स्ट्रेस, कि अगर आप देखें कि जिसको टेंशन लेने की ज्यादा आदत है वो हमारे लिए भी एक डिफिकल्ट मरीज होता है, क्योंकि वो हर चीज को बहुत, उसको ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से नहीं लगता। एक हैप्पी पेशेंट जो हमारी बात समझ रहा है और स्ट्रेस कम ले रहा है तो उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा लगेगा, बट डायरेक्टली स्ट्रेस ऐसा रिलेटेड नहीं है, बट स्ट्रेस के साथ आपकी डाइटरी हैबिट भी चेंज होती है ना, स्ट्रेस के साथ आपका वाटर फ्लूइड इनटेक भी चेंज होता है और बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जो इनडायरेक्टली आपको डिजीजेस से ज्यादा प्रोन बना लेते हैं, जिसमें से स्टोन भी है।
1: जी, तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में अभी भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप फटाफट हमें कॉल करिए, हमें मैसेज करिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेकर फटाफट हम भी वापस आते हैं और जितने प्रश्न बचे हैं उसको जल्दी जल्दी से डॉक्टर साहब से पूछेंगे।

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। कार्यक्रम अब समापन की ओर है, थोड़ा सा समय बचा है। किडनी स्टोन्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स पर काफी सारे बातें हमने नई भी जानी और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। एक हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न पूछ लें।
1: जी मेरा नाम जियाउर रहमान है।
0: जी
1: मैडम नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार, पूछिए।
1: एक आदत है, एट प्रेजेंट आई एम एट द एज ऑफ 74 इयर्स। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब खाना खाता हूँ, एक तो गर्म खाना खाता हूँ
0: जी,
1: और उसमें पानी जो है बीच में पीता रहता हूँ, शुरू में भी पी लेता हूँ, बाद में भी पी लेता हूँ। अमूमन ये सुनने में आया है कि खाना खाने के बाद में जो पानी एक डेढ़ घंटे बाद या आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर ऐसी आदत है, ये मेरी आदत जो बनी हुई है 74 साल में, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अशी वहां कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो अशी कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस आदत से मेरी?
2: देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो सब चीजें ठीक है ना। मगर जनरली ये बोला जाता है और बोला भी जाता है और ये सही भी है कि आपको खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है कि पानी पीने का टाइम और खाने का टाइम अलग किया हुआ है। खाना जाएगा वो उसको कच्चा कच्चा वो पार्ट्स में जाएगा, फिर स्टमक अपना काम करेगा उसको डाइजेस्ट करने में। तो फूड बेटर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है अगर उसका साथ पानी ना पिया जाए। पानी पी लेंगे तो जल्दी से आगे चला जाएगा, तो जनरली मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इसलिए आपको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
0: जी धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब ये सुना जाता है कि पहले जैसे आप कह रहे हैं कि देर से पीना चाहिए, आधा घंटा गैप करके, पर आजकल ये भी कहीं मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ कि बीच में सिप सिप करके पीना चाहिए तो अच्छा रहता है।
2: देखिए सिप करने में वो एक अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा फूड के साथ वाटर इंटेक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गंदा नहीं मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसमें बहुत फ्लूइड इंटेक है। अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 से 4.5 लीटर सिर्फ हमारी जो जीआई ट्रैक है वो एक दिन में डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो वो पानी ऑलरेडी सिक्रीट कर रहा है, वो फूड में मिक्स हो रहा है और तभी वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो रही है। तो हमें अलग से पानी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर किसी वो हैबिट पर है, जनरली हम छोटे बच्चों में तो ये बात मना करते हैं कि जिनको अपने बारे में नहीं पता कि भाई जब आप पानी साथ साथ में मत पीते रहिए, है ना, या फिर कि बहुत लोगों को आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की कि उसका निगला ही नहीं जाता उनको, वो ज्यादा निगलने के लिए है कि गले से नीचे जाने के लिए।
0: अच्छा।
2: तो फूड आप ऐसा लीजिए जो थोड़ा सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड सबसे अच्छा है। बहुत सॉलिड फूड लेंगे तो उसको फिर अच्छे से चबाइए दांतों में, तब वो जा पाएगा। अब आप रोटी ले रहे हैं और उसको मोटा मोटा निगलने की कोशिश करेंगे तो बिना पानी के नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खाने में गलती कर रहे हैं, पानी इसलिए हेल्प कर रहे हैं।
0: ओके चलिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मैसेज के माध्यम से भी हैं, देखते हैं कितने हम ले पाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं ये कि केकेएस रायपुर छत्तीसगढ़ से, उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है लेकिन मेरा एक प्रश्न जो मुझे आपसे सॉल्व कराना है कि मेरी पत्नी की उम्र 49 है, उसे रात को नींद डिस्टर्ब रहती है क्योंकि 2-3 बार उठकर यूरिन पास करने जाना पड़ता है जबकि 9 बजे के बाद वो पानी नहीं पीती है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है और शुगर बीपी नहीं है।
2: देखिए अगर रात में 2 से 3 बार उठना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, एक तक हम नॉर्मल मान लेते हैं। 2 से 3 बार अगर उठना है तो डेफिनेटली उनका एक वर्कआउट, डायबिटीज नहीं है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो रात में पानी भी ज्यादा नहीं पी रही। तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं रात में पानी कम कीजिए, अपना शुगर का टेस्ट कराइए, दोनों ही चीजें नहीं है उनकी। तो उनका डिटेल वर्कअप होगा जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड होगा, यूरोफ्लो होगा, यूरिन रूटीन कल्चर होगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि रात में उनका यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पेशेंट में कहीं ना कहीं कार्डियक चेकअप भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली

0: हमारा दिन में यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रात में कम होता है। एक एज के बाद रात का बढ़ जाता है, तो वो जनरली 50 साल के बाद बढ़ता है। जैसे अभी 49 की एज में अगर बढ़ रहा है तो इनका कार्डियक चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार इनका डिटेल्ड यूरोलॉजी चेकअप भी कराना चाहिए कि रात में यूरिन ज्यादा बन क्यों रहा है। बन रहा है इसलिए ज्यादा बार बार जाना पड़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। और बस एक ये बात और मैं जानना चाह रही थी कि बार बार जैसे किडनी स्टोन होता है तो किडनी के अलावा भी कहीं कहीं और ये स्टोन बन सकता है किसी कारण से, बॉडी की कोई टेंडेंसी हो तो?
0: देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो मैंने आपको बताया किडनी स्टोन हमारा किस किस वजह से बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि किडनी में या किडनी के नीचे यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, प्रोस्टेट आता है, ये सब कनेक्टेड है। इनमें कहीं पर भी रुकावट होगी तो पेशाब जो यूरिन बन रहा है वो रुक रहा है, तो उसमें स्टोन बन सकता है। तो जैसे पीयू जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर किडनी के आगे एक नली होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, या ब्लैडर के आगे प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट वाले पेशेंट जो होते हैं जिनको रुकावट होती है तो उनके ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर ब्लैडर की प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में स्टोन बना तो आपसे स्टोन मत निकलवाइए, आपको प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो स्टोन फिर से हो जाएगा।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इसमें कारण का भी इलाज होगा और उसकी वजह से बने हुए स्टोन का भी इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है।
1: जी, यही मैं चाह रही थी कि आप श्रोताओं को बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो बहुत सारी आज हमने किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स की बातें समझी, जानी, और बहुत सारी बातें और मिथक जो है डॉक्टर साहब ने क्लियर भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ रहे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
8: ठीक है?
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत,

0: वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की, जिसमें भारत और चीन सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है, अब तक 2000 से अधिक मामले सामने आए। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हुए, यह भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने लद्दाख में 22,000 फीट की ऊंचाई से स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी और केरल में तिरुओणम आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी। अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के

0: संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
4: जी हां, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूं एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अभी मैं फिल्म डर का एक गीत सुन रहा था जिसके बोल थे जादू तेरी नजर, और वो गीत सुनते सुनते मेरे दिल और दिमाग में शाहरुख खान का वो भयानक किरदार घूमने लगा जहां शाहरुख खान जूही चावला से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर जूही को उनके इस प्यार से लगता है डर।
5: बरसों से पागल हो तुम ही, मेरा पागलपन हो तुम ही, मेरा जुनून हो। I love you, Kiran।
4: दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या यही प्यार है? क्या इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत? दोस्तों, आज करेंगे इसी विषय पर बातचीत, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

0: जी हाँ, क्या यही प्यार है? आइए जानते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, डर फिल्म में शाहरुख खान ने जूही चावला का जीना दूभर कर दिया था, क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, और आज का युवा भी अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। क्या इसी को प्यार कहते हैं?
1: मुझे तो लगता है कि आजकल की पीढ़ी बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उनको पता ही नहीं प्रेम का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मालूम होता कि प्रेम क्या है तो आए दिन हम समाचार पत्रों में ये खबरें नहीं सुनते कि एक आदमी ने एक लड़की से इतना प्रेम किया कि जब उसका विवाह भी हो गया तब उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जाकर उसका कत्ल किया। और वो भी कैसे कत्ल किया? उसको बहाने से अपने स्कूल के बाहर बुलाया, बोला तुम्हारे हस्बैंड मिलने आए हैं, तो वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए स्कूल के गेट के बाहर आई। और उस आदमी ने, जो एक वक्त उसका प्रेमी हुआ करता था, उसने उसको एक बार

0: नहीं, दो बार नहीं, 20 बार चाकू मारा और उसकी हत्या करी। एक और समाचार में मैंने पढ़ा कि एक लड़का अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और एक बार उसको शक हुआ कि शायद उसके दोस्त के साथ उसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसने उनको सुन लिया बात करते हुए, और उसने अपनी पत्नी की हत्या वहीं के वहीं कर दी। क्या यही प्यार है? प्यार में क्या हत्या की जाती है?
1: यही तो हैरान करने वाली बात है कि प्यार में तो त्याग और बलिदान होता है, लेकिन आजकल जिससे प्यार करते हैं उसी की जान लेते वक्त इंसान हैवान बन रहा है।
0: वही तो मैं कह रही हूँ संतोष, आजकल के जवान लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, हवस क्या है और प्रेम क्या है इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो किसी के साथ अपना हुकअप करेंगे, अपना शारीरिक संबंध बनाएंगे और फिर कुछ समय के बाद वो छोड़कर उसको एक्स प्रेमी का खिताब दे देंगे और आगे दूसरे रिश्ते में चले जाएंगे और फिर तीसरे रिश्ते में चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता
1: जी।
0: कई बार जवान जोड़ों को लगता है कि वो अलग हो गए, लेकिन जिस तरीके से इंसान की रचना की गई है वो इतना आसान नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, वो एक बंधन बन जाता है। और शायद इस गलतफहमी में युवा पीढ़ी हो कि हम आसानी से छोड़ देंगे रिश्ते को, आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अक्सर वो तोड़ा नहीं जाता है और लोग उस रिश्ते में बंधे रह जाते हैं। और यही कारण है कि वो आक्रोश उनके अंदर गुस्सा बन के ऐसा उबलता है कि वो खून कर देते हैं और जेल तक उनको हो जाती है, चाहे जिंदगी भर बैठ के वो फिर अफसोस करते रहें। तो ये सब जो इमोशंस होते हैं, ये जो अट्रैक्शन होती है, ये जो सोशल मीडिया में कि आप रिश्ते बनाएं, रिश्ते तोड़ें, आप अपना सोचें, मतलब एक लिव इन रिलेशनशिप रखें, आप साथ रहें भी लेकिन आपकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं हो, आप फ्री भी हो, मतलब आप साथ रहना भी चाहते हैं, आप एक बंधन में बंधना भी चाहते हैं लेकिन आप एक बंधन में बंधना भी नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से विवाहित दंपत्ति बंधते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेवारियाँ होती हैं, एक दूसरे के बीच में उनका विश्वास और प्रेम होता है, आप वो भी नहीं करना चाहते, आप एक आर्टिफिशियल किस्म की रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जिसके तो फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और बहुत खतरनाक परिणाम भी होते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बोली है आपने विनीता जी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आज युवाओं को क्या राय देना चाहेंगी?
0: मैं कौन होती हूँ जी राय देने वाली संतोष, आजकल के जवान लोग समझदार हैं। मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि खुद ही सोचें, स्वयं ही सोचें, इनकी पीढ़ी है, इनकी जिंदगी है, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, और जो हमारे बड़े लोगों ने जो विवाह परिवार जैसे सुंदर इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो फिर ऐसे खतरनाक उनके परिणाम भी भुगतते हैं। अभी हाल ही में मुझे पता लगा एक लड़की, उसने विवाह किया, छुपा के किया था, फिर वो गर्भवती हुई, फिर बच्चे को जन्म दिया, फिर कुछ समय के बाद उसको अपने पति के साथ नहीं रहना था तो वो पड़ोसी के साथ चली गई, पड़ोसी के साथ फिर उसने अपना अलग घर बसाया, कुछ समय वो वहाँ रही, फिर उसको लगा नहीं मेरा पहला पति ही अच्छा था तो वापस पहले पति के पास आई और इसमें खून हो गया और ये केस अभी न्यायालय में है। तो न्यायाधीश इतने विचलित होकर, इतने परेशान होकर यही सुन रहे थे कि ये होता कैसे है, एक जवान लड़की इतने बड़े बड़े निर्णय अपने इमोशंस पे डिपेंड करके ले कैसे सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में हैं जो जवान लोग हवस को या हॉर्मोन्स को या केवल एक शारीरिक अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं
1: जी।
0: प्रेम तो जीवन भर का संबंध होता है।

0: है जो कि परिवार में विवाह के रूप में ही सुंदर दिखता है, और बहुत विश्वास, बहुत धैर्य और बहुत ही प्रेम के साथ इस विवाह को निभाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि हम सीख सकते हैं, और ये युवा पीढ़ी के हाथ में है कि खुद ही समझे, सोचे कि प्रेम के नाम पर अगर खून होने लग गए, अगर हत्याएं होने लग गईं, तो क्या यही प्यार है?
1: क्या यही प्यार है?
2: क्या यही प्यार है?
3: जी हाँ, यही सोचने और समझने की जरूरत है कि हम जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उसी की जान हम कैसे ले सकते हैं।

0: दोस्तों, इस विषय पर डॉक्टर राजेश छाबड़ा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर राजेश छाबड़ा है। वायलेंट क्राइम्स विद इन द फैमिली, जिसको हम डोमेस्टिक होमिसाइड्स भी कहते हैं, के इंसिडेंस बहुत बढ़ गए हैं। रोज मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कुछ ना कुछ समाचार देखने को या सुनने को मिलता है कि आदमी ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने आदमी को, जिसको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, कि हत्या कर दी। इनके जो मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें आपस में इनके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या आपस में ये जेलसी फील करते हैं एक दूसरे से, या ये फील करते हैं दैट आई हैव बीन बिट्रेड। ये पेशेंट वो भी होते हैं जो एक्यूट साइकोलॉजिकल स्टेट से पास हो रहे होते हैं, या डिप्रेशन के पेशेंट हुए, बहुत ज़्यादा एंशियस एंगजाइटी वाले केसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में लैंड करते हैं। कुछ पेशेंट इसमें ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहल अब्यूज़ के कारण जो है, जिनकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत कम हुई हुई है, और उनके आपस में बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ, वो इतना एस्केलेट कर जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए जो है ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। बात करें अगर इनके समाधान की, तो यदि आप ऐसे किसी पेशेंट को जानते हैं जिनको कि ऐसे मनमुटाव चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स में से पास हो रहे हैं, तो उनको तुरंत ही किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प के लिए आप किसी नज़दीक के डॉक्टर के पास जरूर भेजें। वो प्रॉपरली इवेलुएट करके आपको जो सुझाए कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, दवाइयाँ लेनी है, या आपको दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो जरूर कीजिए।
0: दोस्तों, विनीता शॉ और डॉक्टर राजेश छाबड़ा की बातें सुनकर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्यार में किसी की जान लेना सही है? जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्या जायज है? खुलकर बताइए अपनी राय 7678438471 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 7678438471। इस नंबर पर आप मैसेज, फोन या ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: और दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम वो वाला लेकर आई हूं आप सभी के लिए, जो बहुत खास है, जो हमारे यंगस्टर्स के साथ जुड़ा है और खास तौर पे उनकी कैंपस लाइफ के साथ जुड़ा है। अल्फा जेन, जी हां, अल्फा जेन प्रोग्राम आप सुनते हैं 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर रोज। और इसमें हर रोज हम लेकर आते हैं हमारे यूथ के लिए कुछ ना कुछ नया, और खास तौर पे जो बुधवार का दिन होता है वो हमने रिजर्व कर रखा है आपकी कैंपस लाइफ के लिए। तो कैंपस कॉलिंग, ये है वो हमारा स्पेशल एडिशन जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार को। सो अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग में आज हम किसको लेकर आए हैं आप सभी के लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम पहुंचे एक बहुत ही रिनाउंड विमेन्स कॉलेज, नाम है इसका गार्की कॉलेज, साउथ कैंपस में जो है ये प्लेस्ड है। और यहाँ पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और उन्होंने की वहां के स्टूडेंट से बहुत सारी बातचीत, और मुझे यकीन है कि ऋचा ने बातें तो की ही, लेकिन उसके साथ साथ मजे भी बहुत किए। अगर आपको भी जानना है कि वहां पर क्या कुछ हुआ, तो चलिए आइए सुनते हैं ऋचा की बातचीत गार्की कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ। आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और ये प्रोग्राम है अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन।
2: अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ गार्की कॉलेज, और उस कॉलेज की बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियां मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम ध्वनि खन्ना है, और मैं गार्की कॉलेज में बीए प्रोग्राम परस्यू कर रही हूँ।
2: तो आप कौन सी सोसाइटी से यहाँ पर है?
3: यहाँ पे मैं डांस सोसाइटी से हूँ, जिसका नाम स्पार्क्स है, एंड यहाँ पे मैं कंटेम्प्रेरी बैले एंड जैज की ट्रेनिंग भी लेती हूँ।
2: तो अब तक आपने कहीं प्रोफेशनल लेवल पर कहीं परफॉर्म किया आपने?
3: यस, आई एम ट्रेन्ड प्रोफेशनली इन कथक एंड आई हैव डन मेनी शोज आउटसाइड।
2: कब से स्टार्ट किया आपने लर्न करना?
3: मैंने स्टार्ट करा था बाय द एज ऑफ 6, बट बैले जैज एंड कंटेम्प्रेरी मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट करा है सोसाइटी के थ्रू ही, सो इट वॉज लवली गेटिंग टू नो दीज डांस फॉर्म्स थ्रू द कॉलेज।
2: अगर आपने क्लासिकल सीखा हो तो आप कोई भी डांस फॉर्म को बहुत इजीली सीख सकते हैं, इज इट ट्रू?
3: यस, एक्चुअली जब बेस आपका स्ट्रांग है, क्लासिकल डांस फॉर्म इज वेरी स्ट्रांग, तो आप किसी आप वर्सेटाइल आपकी बॉडी हो जाती है, तो आप किसी भी डांस फॉर्म में जंप कर सकते हो, एंड इट गिव्स यू द स्टेबिलिटी दैट यू नीड टू डू एनी डांस फॉर्म।
4: मेरा नाम सानवी है और मैं मैथ्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं नजाकत सोसाइटी से हूँ, नजाकत द इंडियन डांस सोसाइटी ऑफ गार्की कॉलेज।
2: तो कौन सी डांस फॉर्म करती हैं आप?
4: मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ कथक में, एंड फोक में राजस्थानी कर सकती हूँ, भांगड़ा कर सकती हूँ, विच इज द फोक डांस ऑफ पंजाब।
2: आप मैथ्स, आपने बताया कि आप मैथ ऑनर्स कर रही हैं, विच इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स आई कैन से, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत टफ है, और उसके साथ साथ कथक जैसी डांस फॉर्म परस्यू करना, ये दोनों चीजें कैसे आप बैलेंस कर रही हैं?
4: हम सोचते हैं कि जो मैथ्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट आप कथक में कोई भी टुकड़ा ले लो, टुकड़ा बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको मैथ्स की यूज लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ताल बताऊं, तीन ताल है, तीन ताल 16 मात्रा की होती है, तो उसमें मैथ्स यूज हो रही है, तो डांस में ही मैथ्स इतनी यूज हो जाती है कि मैथ्स ऑनर्स

0: डिफिकल्ट लगनी ही बंद हो जाती है।
1: आप ये कह रही हैं कि जो कथक है यानी उसमें भी मैथमेटिक्स है।
0: हाँ जी, कथक इज फुल ऑफ मैथ्स। तो आप कथक का कुछ भी ले लो, आप टुकड़ा लो, आप परन लो, आप चक्करधार परन लो। चक्करधार परन इस किसी भी एक चीज को 3 बार रिपीट करना, वो परन 3 बार रिपीट होती है, तो उसमें मैथ्स ही भरी हुई है।
1: इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मैथ्स वीक है वो कथक नहीं कर सकता।
0: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कथक शुरू तो करिए, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी।
2: मेरा नाम नैना है और मैं बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ।
1: अपने मन को शांत रखने के लिए आप क्या करती हैं?
2: सो मैं क्लासिकली ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड मैंने भरतनाट्यम सिक्स क्लास से शुरू किया था एंड उसके बाद से मेरे पास जितने भी मेरी स्ट्रेसेस होती हैं वो सब बस्ट करने के लिए मैं डांस अपना यूज करती हूँ।
1: अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अक्सर तौर पर हम लोग सक्सेस स्टोरीज को मोटिवेशनल मान के चलते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है कि फेलियर स्टोरीज भी उतनी ही मोटिवेशनल होती हैं?
2: फेलियर स्टोरीज मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि ज्यादा मोटिवेशनल होती है क्योंकि आप हर जिंदगी के दौर में नहीं जीत पाते हो एंड आपको ये भी सीखना पड़ता है कि हर जीत में हार और हार में जीत होती है।
1: आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम मनस्वी बोरा है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ गार्गी कॉलेज से।
1: बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं?
3: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। मेरा नाम श्रेष्ठा है, मैं बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कर रही हूँ गार्गी कॉलेज से।
1: हाउ एवरी डांस फॉर्म इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
3: पहले तो मुझे लगता है कि एक डांस फॉर्म जहाँ से पैदा होता है सबसे ज्यादा वो डिपेंड वहीं पे करता है। जैसे आप देखोगे इंडिया का जो भी डांस फॉर्म्स है क्लासिकल या फोक, वो जगह जगह पे डिपेंड करते हैं। वहाँ का किस चीज से म्यूजिक बनता था, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, तार है या मिट्टी का है, उस तरीके से बीट बनती है, उस पर उनका डांस डिपेंड करता है। फिर आई थिंक वेस्टर्न में भी ऐसा ही सेम चीज है। जैसे आप देखोगे जैज वगैरह, बैले वगैरह, ये आया है अफ्रीका से जब उनका ऑपरेशन टाइम चल रहा था। हिप हॉप भी तब से आया है। तो आई थिंक उनका जो इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका था, जो सर्कमस्टेंसेस थे अराउंड देम, दे इन्फ्लुएंस ह्यूजली कि डांस कैसे डेवलप होता है एंड हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स।
1: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: एक स्टूडेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम जुदिमा ग्रोवर है एंड मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ इन गार्गी कॉलेज।
1: प्रतिमा, आज की जो एक युवा लड़की है उसका अपने पैरों पर खड़ा होना कितना मायने रखता है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो, या करियर, या उसकी पहचान, क्या है उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना?
4: सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग वुमेन लाइक अस टू स्टैंड ऑन आर फीट। आई मीन वी आर स्टडिंग इन गार्गी कॉलेज एंड वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ अपलिफ्टमेंट एक्टिविटीज फॉर वुमेन। वी आर ऑल्सो वेरी सपोर्टेड बाय आर फैकल्टी एंड बाय आर प्रिंसिपल एंड थ्रू दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्किंग इन एन एनवायरमेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड विद आर करियर। वी ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन एंड वी ऑल्सो गेट द अवेयरनेस। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
1: इन एक्टर सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली द सोसाइटी डू?
4: मैम, वी आर एन एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, सो वी टैकल सोशल इश्यूज लाइक अपसाइक्लिंग, टेक्सटाइल वेस्ट एंड चाइल्ड एजुकेशन। हमने बहुत ज्यादा गैप देखा है चिल्ड्रेन एजुकेशन में। लाइक उनको मैथ्स, SST, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट उन्हें जो एक्चुअल एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली हमें जॉब लेने के लिए चाहिए वो हम नहीं पढ़ा पाते। तो हम उस पर फोकस करते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, हम ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं एंड वी हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन विद दीज सब्जेक्ट्स। So this is one of the issues we tackle. We also tackle women empowerment through awareness of breast cancer and after support surgery.
5: हेलो, मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं गार्गी कॉलेज में थर्ड ईयर की कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अफिलिएटेड टू इनएक्टस गार्गी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी दिस ईयर। तो इनएक्टस के अंदर हमारे वैसे तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स, और एक जो प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट कवच, वो हमारा R&D इनिशिएटिव है, अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। उसके अलावा हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट विकास, प्रोजेक्ट रचना और प्रोजेक्ट नीव। सो जब से इनएक्टस गार्गी कॉलेज में शुरू हुआ है, दैट इज 2014 से, तो प्रोजेक्ट विकास, रचना और नीव ने 3 मेजर प्रॉब्लम्स को टैकल किया है एक तरीके से। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट रचना आता है, प्रोजेक्ट रचना के थ्रू हम फैब्रिक वेस्ट जो होता है, टेक्सटाइल वेस्ट जो होता है, उसको टैकल करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट नीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट, मेजरली प्लास्टिक वेस्ट। लास्टली हमारा एक पायलट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट कवच का, जैसे कि रिधिमा ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोजेक्ट को, बट इट इज मोस्टली रिलेटेड टू

0: breast cancer awareness and post-surgery support to women who have endured such problems.
1: Thank you so much हमसे बातचीत करने के लिए.
0: Thank you so much.
2: मेरा नाम विजेता है मैम. मैम मैं अवनी सोसाइटी का पार्ट हूँ. अवनी एक इन्वायरमेंट रिलेटेड सोसाइटी है गार्गी कॉलेज. हमारी सोसाइटी का मेन फोकस यही होता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए काम करें. हमारी सोसाइटी का जो मोटो है वो है होप. होप स्टैंड फॉर हार्मनी ऑन प्लैनेट अर्थ. हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि अगर हम एक अच्छे फ्यूचर की होप लगाए बैठे हैं तो हमें काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा.
1: बिल्कुल, हमें आज से ही शुरू करना होगा. अगर मैं ये कहूँ कि जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, जो एक नॉर्मल सिटीजन है, वो एनवायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं?
2: मैम, आई पर्सनली बिलीव कि चेंज छोटी छोटी चीजों से ही आता है. हमें जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी चीज करनी है. मेन बात है जैसे टैब है, पानी का टैब बंद कर दे, पौधों में पानी डालें और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें कम करने की कोशिश करें. जैसे हम गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसे कम कर सकते हैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे वो इन आदतों को डालने की जरूर कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए.
2: थैंक यू सो मच मैम.
3: वाकई में बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बातचीत का स्कोप जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा है. क्योंकि 1967 में इस्टेब्लिश हुए इस कॉलेज में, यानी कि गार्गी कॉलेज में, करीब 24 कल्चरल और नॉन कल्चरल सोसाइटीज हैं जहाँ पे बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हैं और अलग अलग कॉजेज के साथ भी जुड़ते हैं. और इंटरेस्ट को डेवलप करने के साथ साथ समाज को बेहतर बनाने की सोच रखना, ये सभी चीजें जो है ना, ये अगर आपको एक साथ कहीं मिलती हैं तो वो है हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस. और इसी को डेडिकेटेड है हमारा ये प्रोग्राम. नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग. सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे. हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए ढूंढ कर यूनिवर्सिटी का एक और कोना और मुलाकात करवाते हैं आपकी उस कोने से, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स से. सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो.

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खां स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
5: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप मेरे यानी स्वाति के साथ और हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ, जो पहुंची साउथ कैंपस के एक बहुत ही रिनाउंड वुमेन्स कॉलेज कार्की कॉलेज और वहां पर उन्होंने इकट्ठा की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे लोगों से की उन्होंने मुलाकात। उनकी मुलाकात हुई वहां की टीचर्स से भी, तो आइए जानते हैं कि वहां के टीचर्स से उन्होंने क्या बात की।
6: अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग के इस कार्यक्रम में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज और मेरे साथ इस कॉलेज की एक टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एफएम रेनबो पर।
7: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नीना कुमार है और मैं प्राणी विज्ञान पढ़ाती हूँ यहाँ पर।
6: मैम आज कॉलेज आने वाली लड़कियों के सपनों में और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनमें आपको क्या बदलाव दिखाई देता है पहले के कंपैरिजन में?
7: पहले मुझे ऐसे लगता था, बच्चों को ऐसा सिर्फ फील होता था कि उनको बस एक डिग्री लेनी है, लेकिन आजकल की जो छात्राएं हैं उनके मन में ये भी धारणा है कि उनको डिग्री लेने के बाद आगे भी कुछ करना है और वो बड़े बड़े पदों पर जाना चाहती है।
6: मैम आपकी नज़र में आज की जो यंग विमेन है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?
7: मुझे लगता है कि उनका इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी ताकत है उनकी।
6: हम कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं ये तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हर एक लड़की को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि वो समाज में एज अ सोसाइटी एज अ फैमिली मेंबर वो उसे डेवलप कर सके?
7: कि सबसे पहले उनके अंदर पेशेंस सीखना बहुत जरूरी है। इस जनरेशन के लिए भी जरा सा छोटा सा कोई काम नहीं हुआ तो उनको ये सीखना है कि थोड़े टाइम के बाद भी हो सकता है, यस और नो नहीं करना है।
6: क्या बात है मैम, कहने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे टीचर्स ही स्टूडेंट्स को राह दिखाते हैं और उन्हें उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये आपकी सलाह न केवल आपके स्टूडेंट तक सीमित रहेगी बल्कि भारत के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
8: थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ।
6: मैम आज के टाइम में जहाँ पर लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहाँ ये कहना भी जरूरी है कि सफलता और असफलता जो करियर के दो मायने हैं उन्हें भी स्टूडेंट्स को लेना आना चाहिए, और जो ऐसी लड़कियां हैं जो असफलता के डर से बड़े सपने नहीं देखती, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
8: तो हम तो ये समझाते हैं उनको कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने फेलियर से डील नहीं किया है। हम अपने इनफैक्ट अपने फेलियर्स के बारे में उनको बताते हैं क्योंकि आई थिंक फेलिंग इज अ वेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। आई थिंक वी ऑल हैव फेल्ड इन सम वे और द अदर एंड आई थिंक मोर देन शेयरिंग आवर स्टोरीज ऑफ सक्सेस वी शुड ऑल्सो शेयर आवर स्टोरीज ऑफ फेलियर। इट्स ऑल्सो ओके टू फेल इन फुल पब्लिक ग्लेयर, इट्स ओके टू फॉल डाउन इन फुल पब्लिक व्यू एंड टू गेट अप टू पिक योरसेल्फ अप टू डस्ट योरसेल्फ। कि डरने की क्या बात है, जैसे हम सब फेल हुए तुम थोड़ा बहुत हो गए, चलते बढ़ो आगे चलते चलो।
6: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मैम जो लड़कियां होती हैं उनके सामने पढ़ाई के बाद करियर बनाने के अलावा एक जिम्मेदारी और होती है और वो जिम्मेदारी है परिवार। तो मैम पढ़ाई प्रतियोगिता परिवार और ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, इसके लिए आपकी उन्हें क्या सलाह रहती है?
8: जो माँ घर पे रह के काम कर रही है और जो फादर बाहर जाके काम कर रहे हैं, हम उनको

0: समझाते हैं कि दोनों काम इक्वली वैल्यूएबल है। जो घर में काम हो रहा है वो अनपेड है, अनएक्नॉलेज्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं है। पापा को तो सैटरडे, संडे, नेशनल हॉलीडेज, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद छुट्टी मिल रही है, मम्मी को कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। एंड वी टेल देम दैट यू हैव टू ग्रो अप टू बी रिस्पॉन्सिबल, बस अपने वो घर का चूल्हा चौका करें, तो ये गलत होगा।
1: कि 3 साल में आपको क्या लगता है कि गार्गी कॉलेज से बच्चा क्या जरूर सीख के निकलता है?
0: लार्जर वर्ल्ड की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, वेदर इट इज क्लाइमेट चेंज, वेदर इट इज टुवर्ड्स आर ओन यू नो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, वेदर इट इज टुवर्ड्स यू नो हैविंग एन ओपिनियन ऑन थिंग्स। और ऐसे ना वो समझें कि क्योंकि वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ओपिनियन होने का राइट नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सब जगह जाएं, सब जगह बोलें, सिर्फ सुने ना, डिस्कस भी करें, कंट्रीब्यूट करें।
1: हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा।
1: अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज, और मेरे साथ इस कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। मैं अभिस्वरा हूँ, गार्गी कॉलेज के छात्र परिषद की अध्यक्ष, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट।
1: कैसे, मतलब आपने सोचा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है कॉलेज का या लीडरशिप में जाना है, कैसे ये थॉट आया आपके मन में?
2: थॉट तो ये मेरे मन में मेरे घर से आया है। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनको देखा देखी एंड मेरी मम्मा को देखा देखी मैंने, लीडरशिप में ही रहे हैं वो, बहुत लोगों का ध्यान रखा है उन्होंने, तो उनसे ये मुझ में आया है। और मैंने अपने कॉलेज में ये करने का इसलिए सोचा क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो आसपास देख के लगता है कि नहीं, इधर कुछ अलग होना चाहिए, एंड उस चीज को देखने का, चेंज करने का एक ही तरीका होता है, और सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप उस चेंज को खुद लाएं।
3: मेरा नाम देशना जैन है, मैं छात्र परिषद की उपाध्यक्ष हूँ। मैं अभी करेंटली थर्ड ईयर में हूँ एंड आई एम परस्यूइंग बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स।
1: एक वुमेन्स पॉलिटिक्स में कैसे मेजर चेंज ला सकती है? बीइंग अ वुमेन पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है?
4: आई फील एज अ वुमेन बिकॉज वी आर कंपैरेटिवली मोर इमोशनली अवेयर एंड मोर इमोशनली कॉम्पिटेंट, तो आई फील कि हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके अपने डिसीजन्स ले सकते हैं। बिकॉज आई फील बिकॉज हम लोग बहुत, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है दैट इज़ क्वाइट ओपन, क्वाइट वाइड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंसिडर करके, जिसके बारे में सोच के सेंसिबली डिसीजन ले सकते हैं।
5: मेरा नाम अदिति कुमार है, मैं गार्गी कॉलेज थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं बीए प्रोग्राम में एनरोल्ड।
1: तो ये बताइए कि आज की जो लड़की है वो अपने करियर के फैसले लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंस उसे, आपको क्या लगता है कहाँ से आता है? एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, या उसके दिल से?
5: टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आता ये इंसान के अंदर से ही है, पर उससे ज़्यादा आई फील लाइक इट कम्स फ्रॉम अदर गर्ल्स दैट दे सी एज वेल। सो व्हेन दे सी अदर गर्ल्स सक्सीड इन लाइफ, इन साइंटिफिक एरियाज, इन टेक एरियाज, इन फाइनेंस एरियाज, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन इंडिया स्पेशली।
1: एब्सोल्युटली। अच्छा, कॉलेज लाइफ में पढ़ाई, करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपने ड्रीम्स के बीच बैलेंस करना आपको कितना टफ लगता है? आपको क्या लगता है कैसे आप इसे मैनेज कर पाएंगी?
5: अभी स्टूडेंट होने के बाद भी थोड़ा सा टफ तो है, पर आई थिंक 2 साल स्टूडेंट होने के बाद थर्ड ईयर में थोड़ा सा बैलेंस आया है, टाइम मैनेजमेंट करना आया है, और आई थिंक पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ लॉट ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स।
1: आपको फैमिली में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है?
5: मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और हर चीज में सपोर्टिव हैं, मेरे इंटर्नशिप्स को लेके, मेरी सोसाइटी को लेके, मेरे पढ़ाई को लेके मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं।
6: हेलो, माय नेम इज श्रेया, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन गार्गी कॉलेज।
1: ओके, एक मैं वर्ड बोलूंगी आपको और उसके लिए आपको एक वर्ड देना है, ठीक है? यानी कि मैं एक शब्द बोलूंगी, उसे सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है आपको वो बताना है। ओके, कॉलेज लाइफ।
6: एंटरटेनिंग।
1: सक्सेस।
6: मीनिंगफुल।
1: लव।
6: फ्रेंड्स।
1: फ्रेंडशिप।
6: मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
1: करियर
6: सबसे ज्यादा प्रायोरिटी।
1: मनी।
6: नीडी।
1: ड्रीम
6: टू बी इंडिपेंडेंट।
1: फेलियर
6: इनएविटेबल।
1: क्या बात है, सारे जवाब तुरंत।
7: हेलो, मेरा नाम रिशिता है, मैं गार्गी कॉलेज में थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं बीए प्रोग्राम में पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी की। तो मैं कुछ शब्द बोलूंगी और उसके बाद आपको उस शब्द से जुड़ा हुआ एक शब्द बोलना है। ओके, योर फ्यूचर इन वन वर्ड।
8: सक्सेसफुल।
7: दिल्ली।
8: होम।
7: अटेंडेंस
8: मैंडेटरी।
7: एग्जाम्स
8: गुड रिजल्ट।
7: मंडे मॉर्निंग
8: टायरिंग।
7: बेस्ट फ्रेंड
8: क्लोजेस्ट।
7: फर्स्ट सैलरी
8: फॉर माई पेरेंट्स।
7: मम्मी।
8: होम।
7: योर कॉलेज इन वन वर्ड।
8: सेफ्टी स्पेस।
7: योर जनरेशन इन वन वर्ड।
8: मोटिवेटेड।
1: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ आके मुझे लग ही रहा है वो वाइब्रेशंस हैं, ऑल ऑफ यू आर रियली मोटिवेटेड।
9: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
10: थैंक यू सो मच।
9: हेलो।

0: मेरा नाम संस्कृति शर्मा है, मैं थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स की स्टूडेंट।
1: तो पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में?
0: पॉलिटिकल साइंस के बाद मैंने एमए करने का सोचा है एंड उसके बाद पीएचडी एंड देन मैं आगे रिसर्च में या फिर प्रोफेसरशिप में एकेडेमिया में जाना पसंद करूंगी।
1: गार्गी कॉलेज ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे एक बूस्ट दिया है?
0: आई थिंक मैं जब स्कूल में थी तब मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती थी और मुझे बहुत ज्यादा एक स्टेज फ्राइट भी था। बट आई थिंक जब से मैं गार्गी में आई हूँ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली है, जैसे लीडरशिप की भी। जैसे मैं अपनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ तो अब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और यू नो टू हाउ टू यूज दैट प्लेटफॉर्म, सो दैट इज व्हाट गार्गी हैज गिवन मी।
2: मेरा नाम कनिका नरसिंघानी है, मैं गार्गी कॉलेज में बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ एंड आई रिप्रेजेंट गार्गी कॉलेज एज पार्ट ऑफ यूफनी द वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी।
1: एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? जॉब और स्टार्टअप?
2: जॉब।
1: सक्सेस या सेटिस्फेक्शन?
2: सेटिस्फेक्शन।
1: मनी और पैशन?
2: पैशन।
1: बुक्स पॉडकास्ट?
2: बुक्स।
1: एआई अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस?
2: चैलेंजेस।
1: एक स्किल जो हर किसी को सीखनी चाहिए?
2: नेटवर्किंग।
1: तो गार्गी कॉलेज में आकर आपने म्यूजिक को कैसे सीखा या म्यूजिक की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
2: सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स सीट्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा स्टूडेंट्स एंड आई एम एन ईसीए स्टूडेंट थ्रू वेस्टर्न म्यूजिक कैटेगरी। आई बिकेम अ पार्ट ऑफ यूफनी व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड आई फील लाइक इससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं बिकॉज यूफनी एज अ सोसाइटी बहुत अलग अलग काइंड ऑफ म्यूजिक गाते हैं। हम एक पीस तैयार करते हैं जिसमें हम वेस्टर्न क्लासिकल गाने की कोशिश करते हैं, पॉप सॉन्ग्स गाने की कोशिश करते हैं, जैज, और इससे मुझे लगता है जब से मैं आई हूँ मेरा जो म्यूजिकल सेंस है और जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है।
1: ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है एंड द वेस्टर्न म्यूजिक, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर?
2: आई फील लाइक एक्सपोजर वाइज बहुत अलग अलग होते हैं दोनों, दोनों का सिंगिंग टेक्निक स्टाइल बहुत अलग होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कई चीज़ें बहुत कॉमन भी है जैसे कि सारे गामा पा धनी सा वेस्टर्न म्यूजिक में डोरे मीफा सोला टीरो हो जाएगा, पर एट द कोर ऑफ इट आई फील लाइक म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट।
3: मेरा नाम आयशा जेटली है, मैं बी कॉम ऑनर्स पढ़ रही हूँ, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड आई एम द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यूफनी।
1: ओके, तो आप भी सिंग करती हैं?
3: हाँ जी।
1: ओके, तो अब आप म्यूजिक की बात कर रही हैं तो हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे आप दोनों से।

0: बहुत बहुत गुड विशेस आप लोगों के लिए, करियर आपका डांस में बने, सिंगिंग में बने, या आपका जो आप चाहते हैं वो बने, सक्सेसफुल हो, ये ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं।
1: थैंक यू मैम।

0: दिल धड़कने दो, इन आंखों को सपने देखने दो, इन अरमानों को पंख लगने दो। जी यही है वो एनर्जी, यही है वो वाइब्स जो कि हमारे कैंपसेस में आपको मिलती है। हमारे जो जेंसी हैं वो वहां पर नई नई सपने देखते हैं, दुनिया को बदल डालने के इरादे रखते हैं, और ये सारी की सारी बातें जो उनकी है, जो उनकी अकेडमिक से जुड़ी हैं, इंटरेस्ट से जुड़ी हैं, और उसके साथ साथ आने वाली जिंदगी से जुड़ी हैं, इन सब चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ना हम लेकर आते हैं हर बार समेट कर आप सभी के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं आप सभी तक। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और इसे आप सुन रहे हो ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं साउथ दिल्ली का एक बहुत ही लीडिंग विमेंस कॉलेज है, गाकी कॉलेज, और वहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और वहां पे की उन्होंने ढेर सारी बातचीत, बहुत सारी आप सुन चुके हैं। आइए अब मुलाकात करते हैं वहां की प्रिंसिपल से ऋचा के साथ।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ गार्गी कॉलेज, इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद, और आपका भी यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम वंदना लूथरा है, मैं पिछले 9 महीने से यहाँ पे प्राचार्य का काम कर रही हूँ, इससे पहले मैं भौतिकी विभाग में एक प्रोफेसर थी।
1: मैम कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं?
2: हमारा कॉलेज तीनों तरह की स्ट्रीम्स में कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और एजुकेशन सभी हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, और टोटल मिला के हमारे 20+ कोर्सेज हैं यहाँ पे।
1: मैम क्या कॉलेज कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ऑफर करता है?
2: हमारे यहाँ पे एड ऑन कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इस तरह के काफी कोर्सेज टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं और अलग अलग विषयों पे भी होते रहते हैं।
1: किस तरह आप लोग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं बाहर के वर्ल्ड के लिए?
2: हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप्स को काफी तवज्जो दी जाती है, और इसके हिसाब से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर में अभी हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेन किया जा रहा है। प्लेसमेंट हमारा हर साल बढ़ रहा है, जैसे अभी इस बार हमने एक स्पेशल ड्राइव सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए किया, जो कि इन एडिशन था जो हम रेगुलरली करते हैं।
1: आप जानती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे विमेन कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे में आपके हिसाब से गार्गी कॉलेज कैसे स्टैंड आउट करता है?
2: हम यहाँ पे जो भी हमारे आउटगोइंग स्टूडेंट होते हैं उसमें ये ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि या तो वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं या फिर उनको जॉब मिल रही है। अगर ये करके हमारे एक हैवी परसेंटेज जो है इन दोनों में जा रहा है, तो वही उसी से हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो अपने पैशन के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बना रहे हैं। ये दोनों चीजें एक पैरामीटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने किसी पैशन को आगे परस्यू करना चाहते हैं।
1: मैम आप गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो जरूर आपके लिए कोई बहुत ही मोमेंट रहा होगा जो आपके लिए बहुत प्राउड का होगा, वो प्राउड मोमेंट आपके लिए कौन सा है?
2: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक मोमेंट नहीं है, बहुत सारे मोमेंट डे टू डे बेसिस पे आते रहते हैं। जैसे अभी इस साल में हम अपना 60वां साल मना रहे हैं, और हमारे को अभी भारत सरकार में डाक विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमारे कॉलेज के नाम पे एक स्टैंप जारी की है, कॉमेमोरेटिव स्टैंप, एज वन ऑफ दी 4 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेन कॉलेजेस। इसके अलावा जब हमारे बच्चे हमें बताते हैं कि उनका अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट हो रहा है, कोई बच्चा हमारा एयरफोर्स में जा रहा है, कोई बच्चा अगर हमारा यूपीएससी में जा रहा है, या कोई बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है और अब वहां पे अलग अलग तरह से अपनी जो उसने प्रतिभा है उसको दिखाने की उसको मौका मिल रहा है, तो वो सारे जो मोमेंट्स हैं आई वुड से कि वो सारे एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं।
1: मैम आप आज एक प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ कार्यरत हैं, तो मैम जब कभी आप स्टूडेंट्स को देखती हैं अपने कॉलेज में आसपास, तो अपने कॉलेज डेज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है?
2: सबसे पहले तो मैं

0: कहती हूँ कि कॉलेज में रहते हुए आप हमेशा अपने आप को उसी एज का ही समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें यही दिखाते हैं कि उस टाइम पे हम इसी तरह के थे और ऐसा करते हैं, तो वो यादें हमेशा याद ही रहती हैं। और जैसे ही हम, मैंने आपको बताया कि हम लोग इकट्ठे मिलके मूवी देखने जाते थे, और जैसे ही कोई अच्छी मूवी रिलीज होती थी तो एक ग्रुप बन जाता था और ये डिसाइड होता था कि कब जाना है, तो वो सब चीजें अब वो फिर से याद ताजा हो ही जाती है करने।
1: मैम, आप एक स्टूडेंट रही थी, अब आप एक बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज की आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन जब आप स्टूडेंट होंगी तब कुछ ना कुछ आपके गोल्डन मंत्रास होंगे जो आज आपने स्टूडेंट्स को आप पास ऑन कर दिए हैं। आपके वो गोल्डन मंत्रास क्या हैं?
0: मैं यही स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको पैशन के साथ करिए। जब आप पैशन के साथ करते हैं तो आपकी बाकी की आसपास की प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। और जैसे जैसे टाइम आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करिए। अगर इवॉल्व करते हैं तो आपका यू आर प्रोग्रेसिंग विद द टाइम्स, एंड इफ दैट हैपेंस ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट। एंड टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सभी को आई थिंक अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका काम जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर ऑल।
1: बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, न केवल ये आइडिया मिला कि आप एक कितनी बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके बाद भी एक स्टूडेंट आपके अंदर आज भी जिंदा है जो फिर से मूवी जाना चाहता है। जो आपसे बात करके बहुत अच्छा
0: थैंक यू
1: लगा।
0: सो मच।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, और आज ये स्पेशल एडिशन आप तक पहुंचा हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ फ्रॉम द विमेंस कॉलेज गार्की कॉलेज। जी हाँ, ये कॉलेज जो 1967 में 207 स्टूडेंट, साथ ही 16 फैकल्टी मेंबर्स और केवल दो कोर्सेज के साथ शुरू हुआ था, आज एक बहुत लंबा सफर जो है वो तय कर चुका है। हिस्ट्री पीछे जा चुकी है, फ्यूचर में आगे पॉसिबिलिटीज बिखरी हुई हैं। आगे इवॉल्व होना, आगे अपडेट होना और आगे बढ़ना, यही मंत्र है जो अल्टीमेटली जो है हमें हर कॉलेज से मिलता है, कि समय के साथ बदलते रहें, आगे बढ़ते रहें और नई नई पॉसिबिलिटीज तलाशते रहें, नए नए आसमान आप खोजते रहें। इसी इसी बात के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम जो है यहीं पर समेटना चाहती हूँ, समय इजाजत नहीं देता। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गार्गी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है ये, और हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने की ये सारी मेहनत, सारी बातचीत आप तक पहुंचाने की। फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: प्रस्तुत
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। इधर बिहार में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ के कारण हुई जानहानि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत और तेजी से विकसित हो रही पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती सीतारमण ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
1: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी

0: अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. In Nepal, according to an official source, 17 persons have

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত এতিয়া 8:45 চামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया।

0: और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

0: वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि, सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया।
2: इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
3: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
4: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु